इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट टच.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हम तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर हमें कुछ दवाइयां देता है और हम ठीक हो जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी भी बीमारी है जो हमें रोज अंदर ही अंदर खोखला कर रही है? चिंताओं की बीमारी, ईर्ष्या की बीमारी, वासनाओं की बीमारी और सबसे बड़ी बात, इस नश्वर संसार को सच मान बैठने की बीमारी. हम रोज इस बीमारी को ठीक करने के लिए बाहरी दुनिया में सुख ढूंढते हैं, लेकिन अफसोस कि मर्ज कम होने के बजाय बढ़ता ही जाता है. कबीर साहब आज हमें इसी भीतरी व्याधि का कारण भी बता रहे हैं और उसकी अचूक दवा भी दे रहे हैं. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दिव्य और हिलिंग सूत्र. कांची कारी जिनी करें, दिनी दिनी बधे बियाधी, राम नाम कबीर रुचि भाई, याही औषधि साधी.

हैं। श्रोताओं, कबीर साहब हमें सचेत करते हुए कहते हैं, कांची कारी जिनी करे, तुम इस संसार की कांची कारी यानी कांच जैसी कच्ची और छूटी कारीगरी में मत उलझो। यह संसार बाहर से देखने में कितना चमकदार और सुंदर लगता है, भीतर से उतना ही खोखला और क्षणभंगुर है। अगर तुम इसी दिखावे को सच मानकर इसमें आसक्त होते रहोगे तो क्या होगा? दिन दिन बंधे व्याधि, तुम्हारी व्याधि यानी मानसिक रोग, तनाव और अशांति दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। इस असाध्य बीमारी से बचने का उपाय कबीर अगली पंक्ति में देते हैं, राम कबीर रुचि भई। कबीर कहते हैं कि मेरी रुचि, मेरा प्रेम और मेरी लगन तो अब उस राम नाम में, उस परम चैतन्य सत्ता में हो गई हैं। यही औषधि साधी और मैंने अपने जीवन में इसी राम नाम की औषधि यानी दवा को साध लिया है, इसे सिद्ध कर लिया है। अब संसार का कोई रोग मुझे छू नहीं सकता। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा भव रोग से मुक्ति का महामंत्र है। वेदांत में संसार को माया या एक आभास कहा गया है। जब तक मनुष्य इस आभास को सत्य मानकर इसमें अपनी ऊर्जा लगाता है, तब तक उसका मन इच्छाओं और भयों का घर बना रहता है। यही असली व्याधि है। कबीर समझा रहे हैं कि इस रोग का इलाज बाहर की किसी दवा में नहीं है। जब चेतना की रुचि बदलती है यानी जब यह संसार के आकर्षणों से हटकर आत्म तत्व की ओर मुड़ती हैं, तो मन के सारे विकार अपने आप शांत होने लगते हैं। राम नाम का सुमिरन कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करने का एक परम वैज्ञानिक औषधि है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने मन को भीतर झांक कर देखिए। कहीं हम भी रोज अपनी व्याधि यानी मानसिक चिंताओं को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? हम जिन कांच के खिलौनों को बटोरने में दिन रात एक कर रहे हैं, क्या वे हमारे भीतर की तड़प को शांत कर पा रहे हैं? आज कोशिश कीजिए इस कांच की कारीगरी के पार देखने की। अपने भीतर उस राम के प्रति रुचि जगाइए जो शांति और आनंद का अनंत स्रोत हैं। जब आप इस भीतरी औषधि को साथ लेते हैं तो संसार के थपेड़े आपको बीमार नहीं करते, बल्कि आपकी चेतना सदा स्वस्थ और मुक्त रहती हैं। बाहरी भटकाव को विराम दीजिए और इस परम औषधि का सेवन शुरू कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 1 भावन 90.8 FM, always had touchy.
1: मानव को भ्रमित करने वाली, बुद्धि को अंध बनाने वाली दिशा अधिकाधिक ताकतवर बनती गई और मानवी देह की पशुवत अवस्था हो गई. एक दूसरों पर अधिकार जमाने वालों की जमात निर्माण हुई. भेदाभेद का स्तोम बढ़ गया. मनुष्य मनुष्य में भेदाभेद की खाई अधिक गहरी होती गई. स्वार्थांध का नंगा नाच शुरू हुआ. सुखोपभोग की पिपासा ने मानव को पागल बना दिया. मनुष्य का मन विवेक और संस्कार से नहीं हुआ पुष्ट, बल्कि होता रहा दुष्ट, नियंत्रण रहित बेलगाम, मानवता होती रही रुष्ट. मनुष्य पर अमानवीयता के कारण देह मनुष्य का, आचरण पशु का, विचार शैतान का. ऐसा वह मनुष्य कैसा, अस्त व्यस्त कर्म, ऐसा यह मर्म मनुष्य का. मनुष्य को मानव बनाने वाले विवेकी ज्ञान केंद्र को बुनियादी आधार के रूप में देखने वाले मनुष्य को पृथक पृथक धर्म ग्रंथों ने अपने कब्जे में कर लिया. उसी से धर्मांधता फैलती गई. अपने अपने धर्म के अपने अपने लोग, अलग अलग होते हुए मनुष्य का आचरण, दिनचर्या, व्यवहार, कार्य क्रिया का रवैया, पूजा अर्चना, स्त्रोत, यज्ञ होम हवन नमस्कार धर्म की भिन्नता के अनुरूप तय होते गए. धर्म की स्थापना और उनकी केंद्रीय देववादी काल्पनिकता परिपोषित हुई. देववाद की स्तुति भजन पूजन का फैलाव होते गया और यथार्थ का जीना दुरूह एवं मृत प्राय सा हुआ. कल्पनाओं के झूले में झूलता हुआ. हे मनुष्य, तू भ्रमित हुआ, बहता गया जहां नहीं बहना चाहिए वहां. तेरा समतोल ढलता गया. स्वयं की प्रतिभा का सामर्थ्य होते हुए भी तू समझ ही नहीं पाया खुद को. तुझे एहसास ही नहीं हुआ अपनी संवेदनाओं का. तूने परखा ही नहीं वर्तमान को. तू अटकता रहा निरंतर भूतकाल और भविष्यकाल में. वर्तमान संवेदनशील तेरा मन तू कल्पना की विलासिता में भूल गया. इसीलिए तेरे ही अंतस्त ने तुझे धोखा दिया और अनगिनत विचारों का सैलाब तुझ में समाहित हुआ. तू नहीं रोक सका तेरा स्वार्थ. तू नहीं रोक सका तुझ में निहित द्वेष, क्रोध, लालच, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर, षड रिपु और अनंत व्याधि. तेरे मन में निहित काल्पनिक अपेक्षाओं से तू भ्रमित हुआ. निरंतर इधर से उधर, उधर से इधर खोजता रहा स्वयं को विविध धर्मों में और विश्वास से टिका दी गर्दन. उनमें से काल्पनिकता पर खुद के विवेक को दफना कर काल के प्रवाह में शिक्षा एवं अनुसंधान से तू विकसित होता गया और दृश्यमान होता रहा तू तेरी ज्ञान शक्ति के आविष्कार से. तब तू थोड़ा सा सकुचाया, घबराया, अवक हुआ और बीच बीच में समाधान की सांस भी लेता रहा. भौतिकता का उत्कर्ष और तुझे जो हुआ हर्ष, इनके बीच में तू खुद को भूल गया. वर्तमान व्यवहार से लताड़ा हुआ, भौतिक सुख सुविधा की लालच में पछाड़ा हुआ, स्वार्थांध के कोहरे में तू स्वयं को भूल गया. हे मानव, तू जाति पाति के दलदल में समूह गणिक जैसे अटकता गया, वैसे ही धर्म के जंजाल में भी तूने शेखी बघारी अपने पंथ की और निरंतर कहता रहा मैं श्रेष्ठ हूँ. मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तेरे श्रेष्ठत्व के अहंकार ने अपने समूह की पुष्टि करने कुछ स्वयं घोषित विद्वान अवतरित हुए। उन्होंने मनुष्य मनुष्य में भेदाभेद का तत्व ज्ञान बार बार यहाँ की धरती में बोया। हे मनुष्य, तेरे जन्म का आरंभ बिंदु किसे मालूम है? पर वे सीना तान कर कहने वाले आगे आए, और तू उन पर विश्वास कर अलग हट गया। वहीं तेरी प्रखर बौद्धिकता की धार कमजोर सिद्ध हुई। कहते हैं एक विराट पुरुष के मुख से मनुष्य का जन्म हुआ। बाहु, उदर और पांव से भी मनुष्य जन्म का बखान बिना थके कहे जा रहे हैं। व्यक्ति व्यक्ति में भेद करने वाले धर्मांध विद्वान सृष्टि की रचना का भेद ज्ञात होने का दावा करने लगे हैं, तथा ईश्वर से आदम और उनके शरीर से ईव निर्माण की बात करते हैं। आगे स्त्री पुरुष के संयोग से मनुष्य का जन्म हुआ। इस प्राकृतिक सत्य को स्वीकारने के बाद भी अभियान शुरू है मनुष्य के विचार प्रवाह का, निरांध बनकर काल्पनिक बिंदुओं की ओर। तूने कहा पृथ्वी सपाट है, उनकी अंडाकृति अस्तित्व का वैज्ञानिक सत्य तूने नकारा है धर्म के नाम पर, और दंडित किया है सत्य को सो उद्देश्य। तथापि हजारों वर्षों का अज्ञान संचित रखा है कुछ धर्मांध भक्तों ने, प्रस्तापितों की उद्यमता ने। विवेकी सत्य की खोज करने वाले को यातना एवं मृत्युदंड भोगना पड़ा है इस धरती पर। तेरे मानवी देह को गवाह बनाकर नहीं दिखा सके तुम कल्याणकर्ता देवता का अस्तित्व, परंतु पत्थर में देवता साकार रूप है ऐसा कहने के लिए तुझे मजबूर कर दिया। यदि नकार देता देवता का अस्तित्व तू, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती तुझे। तेरी पीढ़ियां नरक में जाएगी ऐसे दिखाया गया भय तुझे। भय मुक्त करने के बजाय भयभीत किया गया तुझे। तुझ में स्थायी रूप से भय की प्रतिस्थापना।
2: अपन ट्यून के लिए रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपले खंदेश आपली मानस।
3: गीताई अध्याय 9 मानव सेवीची राजविद्या समर्पण योग अथवा राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान म्हणाले, आता गुपित हे थोर सांगतो निर्मला तुझ रविज्ञाने कसिले ज्ञान अशुभा तू निसोडवी राजविद्या महागुह्य उत्तमोत्तम पावन प्रत्यक्ष हे सुके लाभे धर्मसार सनातन लोकनास्तिक हा धर्म अश्रद्धेने न सेविती मृत्युची धरती वाट संसारी मज सोडुने मीची अव्यक्त रूपाने जग हे व्यापिले असे माझ्यात राहती भूते मी न भूतात राहतो न वा भूते हि माझ्यात माझा हा दिव्य योग की करितो धरितो भूते परित्यात नसे कुठे आकाशात महावायू सदा सर्वत्र राहतो माझ्यात सगळी भूते राहती जान तू तशी कल्पांती निजवी भूते मी माझ्या प्रकृती मध्ये कल्पारंभी पुन्हा सारी मीची जागवितो स्वये हाती प्रकृती घेवोनी जागवी मी पुन्हा पुन्हा भूतांचा संघ हा सारा प्रकृतीच्या अधीन जो परीही सगळी कर्मे बांधू न शकती मज उदासीना परी राहे अनासक्त मनुनिया साक्षी मी प्रकृती द्वारा उभारी सचराचर त्यामुळे सर्वसृष्टीची ही घडामोड होत असे मजमानवरूपात् तुच्छत्वे मूढ देखति नेनुनी थोरले रूप जे माझे विश्वचालक ते आशावाद मूढांचे कर्मे ज्ञाने हिति वृथा संपत्ति जोडिली ज्यांनी आसुरी मोहकारक दैवी संपत्ति जोडोनी महात्मे भजति मज अनन्य भावे जानुनी मी विश्वारंभ शाश्वत अखंड कीर्तने माझ्या यत्नशील दृढव्रती भक्तीने मज वंदोनी भजती नित्य जोडिले दुसरे ज्ञान यज्ञाने भजती व्यापका मज ब्रह्म भावे विवेकाने अविरोधेची देखुनी मीची संकल्प मी यज्ञ स्वावलंबन अन्न मी मंत्र मी हव्यते मीची अग्नि मी मीची अर्पण मी ह्या जगास आधार माय बाप वडील मी मी तिन्ही वेद ओंकार जानन्या योग्य पावन साक्षी स्वामी सखा भरता निवास गती आसरा करी हरी धरी मीची ठेवा मी बीज म्यक्षय तापतो सूर्य रूपे मी सोडितो वृष्टी खेचितो मृत्यु मी आणि मी मोक्ष असे आणि नसेहि मी वेदाभ्यासी सोमपाने पुनीत माझ्या यज्ञे इच्छिति स्वर्ग जोडू ते पुण्याने जाऊनी इंद्रलोकी तेथीचे ते भोगिति दिव्य भोग त्या स्वर्गाते भोगुनी ते विशाळ क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकास येति ऐसे निष्ठा ठेवुनी वेदधर्मी येने जाने जोडिती काम मूढ अनन्य भावे चिंतोनी भजती भक्त जे मज सदा मिसळले त्यांचा मी योग क्षेम चालवी श्रद्धा पूर्वक जे कोणी यजिती अन्य दैवते यजिती तेही मातेची परी मार्गास जो सोडुनी भोक्ता मी सर्व यज्ञांचा फलदाता ही मी चितो नेणती तत्व हे माझे म्हणूनी पडती चिते देवांचे भक्त देवांस पितरांचे तयांसची भूतांचे भक्त भूतांस माझे ही मजपावती पत्र वा पुष्प जो प्रेमे फळ वा जळ दे मज ते त्या पवित्र भक्ताचे अर्पिले खाय मी सुखे जे खासी होमिसी देसी जे जे आचरसी तप जे काही करिसी कर्म ते करी मज अर्पण अशाने तोडुनी सर्व कर्म बंध शुभाशुभ योग संन्यास साधुनी मिळसी मज मोकळा सममी सर्व भूतांस प्रिया प्रिय नसे मज परी प्रेम बळे राहे भक्त माझ्यात त्यात मी असो मोठा दुराचारी भजे मज अनन्य जो मानावा तो तसा साधू त्याचा सुंदर निश्चय शीघ्र तो होय धर्मात्मा शांती शाश्वत मेळवी जान निश्चित तू माझा भक्त नाश न पावतो धरुणी आसरा माझा भोळे स्त्री वैश्य शूद्रही की पाप योनी जे जीव तेही मोक्षास पावती तेथे ब्रह्मर्षि राजर्षि ह्यांची गोष्ट कशासती भजतु मज आलास लोकी सु दुःख दनश्वर प्रेमाने ध्यास घेवूनी यजी मज नमी मज असे जोडुनी आत्म्यास मिळसी मज मत्पर अध्याय 9 समाप्त.
2: आप सुन रहे हो रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश आपली माणसं.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहां अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमनसिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हम तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर हमें कुछ दवाइयां देता है और हम ठीक हो जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी भी बीमारी है जो हमें रोज अंदर ही अंदर खोखला कर रही है? चिंताओं की बीमारी, ईर्ष्या की बीमारी, वासनाओं की बीमारी, और सबसे बड़ी बात, इस नश्वर संसार को सच मान बैठने की बीमारी. हम रोज इस बीमारी को ठीक करने के लिए बाहरी दुनिया में सुख ढूंढते हैं, लेकिन अफसोस की मर्ज कम होने के बजाय बढ़ता ही जाता है. कबीर साहब आज हमें इसी भीतरी व्याधि का कारण भी बता रहे हैं और उसकी अचूक दवा भी दे रहे हैं. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दिव्य और हिलिंग सूत्र. कांची कारी जिनी करें, दिनी दिनी बधे व्याधी, राम नाम कबीर रुचि भाई, याही औषधि साधी.

अधीन श्रोताओं, कबीर साहब हमें सचेत करते हुए कहते हैं, कांची कारी जिनी करें, तुम इस संसार की कांची कारी यानी कांच जैसी कच्ची और छूटी कारीगरी में मत उलझो। यह संसार बाहर से देखने में कितना चमकदार और सुंदर लगता है, भीतर से उतना ही खोखला और क्षणभंगुर है। अगर तुम इसी दिखावे को सच मानकर इसमें आसक्त होते रहोगे तो क्या होगा? दिन दिन बंधे व्याधि, तुम्हारी व्याधि यानी मानसिक रोग, तनाव और अशांति दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। इस असाध्य बीमारी से बचने का उपाय कबीर अगली पंक्ति में देते हैं, राम कबीर रुचि भई। कबीर कहते हैं कि मेरी रुचि, मेरा प्रेम और मेरी लगन तो अब उस राम नाम में, उस परम चैतन्य सत्ता में हो गई हैं। यही औषधि साधी और मैंने अपने जीवन में इसी राम नाम की औषधि यानी दवा को साध लिया है, इसे सिद्ध कर लिया है। अब संसार का कोई रोग मुझे छू नहीं सकता। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा भव रोग से मुक्ति का महामंत्र है। वेदांत में संसार को माया या एक आभास कहा गया है। जब तक मनुष्य इस आभास को सत्य मानकर इसमें अपनी ऊर्जा लगाता है, तब तक उसका मन इच्छाओं और भयों का घर बना रहता है। यही असली व्याधि है। कबीर समझा रहे हैं कि इस रोग का इलाज बाहर की किसी दवा में नहीं है। जब चेतना की रुचि बदलती है यानी जब यह संसार के आकर्षणों से हटकर आत्म तत्व की ओर मुड़ती हैं, तो मन के सारे विकार अपने आप शांत होने लगते हैं। राम नाम का सुमिरन कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करने का एक परम वैज्ञानिक औषधि है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने मन को भीतर झांक कर देखिए। कहीं हम भी रोज अपनी व्याधि यानी मानसिक चिंताओं को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? हम जिन कांच के खिलौनों को बटोरने में दिन रात एक कर रहे हैं, क्या वे हमारे भीतर की तड़प को शांत कर पा रहे हैं? आज कोशिश कीजिए इस कांच की कारीगरी के पार देखने की। अपने भीतर उस राम के प्रति रुचि जगाइए जो शांति और आनंद का अनंत स्रोत हैं। जब आप इस भीतरी औषधि को साथ लेते हैं तो संसार के थपेड़े आपको बीमार नहीं करते, बल्कि आपकी चेतना सदा स्वस्थ और मुक्त रहती हैं। बाहरी भटकाव को विराम दीजिए और इस परम औषधि का सेवन शुरू कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 1 भावन 90.8 FM, always had touchy.
1: मानव को भ्रमित करने वाली, बुद्धि को अंध बनाने वाली दिशा अधिकाधिक ताकतवर बनती गई और मानवी देह की पशुवत अवस्था हो गई. एक दूसरों पर अधिकार जमाने वालों की जमात निर्माण हुई. भेदाभेद का स्तोम बढ़ गया. मनुष्य मनुष्य में भेदाभेद की खाई अधिक गहरी होती गई. स्वार्थांध का नंगा नाच शुरू हुआ. सुखोपभोग की पिपासा ने मानव को पागल बना दिया. मनुष्य का मन विवेक और संस्कार से नहीं हुआ पुष्ट, बल्कि होता रहा दुष्ट, नियंत्रण रहित, बेलगाम. मानवता होती रही रुष्ट. मनुष्य पर अमानवीयता के कारण देह मनुष्य का, आचरण पशु का, विचार शैतान का. ऐसा वह मनुष्य कैसा, अस्त व्यस्त कर्म, ऐसा यह मर्म मनुष्य का. मनुष्य को मानव बनाने वाले विवेकी ज्ञान केंद्र को बुनियादी आधार के रूप में देखने वाले मनुष्य को पृथक पृथक धर्म ग्रंथों ने अपने कब्जे में कर लिया. उसी से धर्मांधता फैलती गई. अपने अपने धर्म के अपने अपने लोग, अलग अलग होते हुए मनुष्य का आचरण, दिनचर्या, व्यवहार, कार्य क्रिया का रवैया, पूजा अर्चना, स्त्रोत, यज्ञ, होम, हवन, नमस्कार, धर्म की भिन्नता के अनुरूप तय होते गए. धर्म की स्थापना और उनकी केंद्रीय देववादी काल्पनिकता परिपोषित हुई. देववाद की स्तुति, भजन, पूजन का फैलाव होते गया और यथार्थ का जीना दुरूह एवं मृत प्राय सा हुआ. कल्पनाओं के झूले में झूलता हुआ, हे मनुष्य, तू भ्रमित हुआ, बहता गया जहां नहीं बहना चाहिए वहां. तेरा समतोल ढलता गया. स्वयं की प्रतिभा का सामर्थ्य होते हुए भी तू समझ ही नहीं पाया खुद को. तुझे एहसास ही नहीं हुआ अपनी संवेदनाओं का. तूने परखा ही नहीं वर्तमान को. तू अटकता रहा निरंतर भूतकाल और भविष्यकाल में. वर्तमान संवेदनशील तेरा मन तू कल्पना की विलासिता में भूल गया. इसीलिए तेरे ही अंतस्थ ने तुझे धोखा दिया और अनगिनत विचारों का सैलाब तुझ में समाहित हुआ. तू नहीं रोक सका तेरा स्वार्थ. तू नहीं रोक सका तुझ में निहित द्वेष, क्रोध, लालच, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर, षड रिपु और अनंत व्याधि. तेरे मन में निहित काल्पनिक अपेक्षाओं से तू भ्रमित हुआ. निरंतर इधर से उधर, उधर से इधर खोजता रहा स्वयं को विविध धर्मों में और विश्वास से टिका दी गर्दन. उनमें से काल्पनिकता पर खुद के विवेक को दफना कर काल के प्रवाह में शिक्षा एवं अनुसंधान से तू विकसित होता गया और दृश्यमान होता रहा तू तेरी ज्ञान शक्ति के आविष्कार से. तब तू थोड़ा सा सकुचाया, घबराया, अवक हुआ और बीच बीच में समाधान की सांस भी लेता रहा. भौतिकता का उत्कर्ष और तुझे जो हुआ हर्ष, इनके बीच में तू खुद को भूल गया. वर्तमान व्यवहार से लताड़ा हुआ, भौतिक सुख सुविधा की लालच में पछाड़ा हुआ, स्वार्थांध के कोहरे में तू स्वयं को भूल गया. हे मानव, तू जाति पाति के दलदल में समूह गणिक जैसे अटकता गया, वैसे ही धर्म के जंजाल में भी तूने शेखी बघारी अपने पंथ की और निरंतर कहता रहा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तेरे श्रेष्ठत्व के अहंकार ने अपने समूह की पुष्टि करने कुछ स्वयं घोषित विद्वान अवतरित हुए। उन्होंने मनुष्य मनुष्य में भेदाभेद का तत्व ज्ञान बार बार यहाँ की धरती में बोया। हे मनुष्य, तेरे जन्म का आरंभ बिंदु किसे मालूम है? पर वे सीना तान कर कहने वाले आगे आए और तू उन पर विश्वास कर अलग हट गया। वहीं तेरी प्रखर बौद्धिकता की धार कमजोर सिद्ध हुई। कहते हैं एक विराट पुरुष के मुख से मनुष्य का जन्म हुआ। बाहु, उदर और पांव से भी मनुष्य जन्म का बखान बिना थके कहे जा रहे हैं। व्यक्ति व्यक्ति में भेद करने वाले धर्मांध विद्वान सृष्टि की रचना का भेद ज्ञात होने का दावा करने लगे हैं तथा ईश्वर से आदम और उनके शरीर से ईव निर्माण की बात करते हैं। आगे स्त्री पुरुष के संयोग से मनुष्य का जन्म हुआ। इस प्राकृतिक सत्य को स्वीकारने के बाद भी अभियान शुरू है मनुष्य के विचार प्रवाह का। निरांध बनकर काल्पनिक बिंदुओं की ओर तूने कहा पृथ्वी सपाट है, उनकी अंडाकृति अस्तित्व का वैज्ञानिक सत्य तूने नकारा है धर्म के नाम पर और दंडित किया है सत्य को सो उद्देश्य। तथापि हजारों वर्षों का अज्ञान संचित रखा है कुछ धर्मांध भक्तों ने, प्रस्तापितों की उद्यमता ने। विवेकी सत्य की खोज करने वाले को यातना एवं मृत्युदंड भोगना पड़ा है इस धरती पर। तेरे मानवी देह को गवाह बनाकर नहीं दिखा सके तुम कल्याणकर्ता देवता का अस्तित्व, परंतु पत्थर में देवता साकार रूप है ऐसा कहने के लिए तुझे मजबूर कर दिया। यदि नकार देता देवता का अस्तित्व तू, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती तुझे। तेरी पीढ़ियां नरक में जाएगी ऐसे दिखाया गया भय तुझे। भय मुक्त करने के बजाय भयभीत किया गया तुझे। तुझ में स्थायी रूप से भय की प्रतिस्थापना।
2: अपन ट्यून के लिए रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश आपली माणसं।
3: गीताई अध्याय 9 मानव सेवेची राजविद्या समर्पण योग अथवा राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान म्हणाले आता गुपित हे थोर सांगतो निर्मला तुझ रविज्ञाने कसिले ज्ञान अशुभा तू निसोडवी राजविद्या महागुह्य उत्तमोत्तम पावन प्रत्यक्ष हे सुके लाभे धर्मसार सनातन लोकनास्तिक हा धर्म अश्रद्धेने न सेविती मृत्युची धरती वाट संसारी मज सोडुनी मीची अव्यक्त रूप

ग्रामगीता चिंतन भाग 36 या भागात ग्रामगीता ग्रंथाचे कर्ते प्रातस्मरणीय स्वानंद सुखनिवासी भगवान वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराजांचा अधिकार नि मनाची अवस्था किती मोठी होती हे प्रथम पाहू। संत मोठेपण कधीच दाखवत नसतात, उलट लहानपण समोर ठेवतात। मैं संत नहीं साधना हूँ, सत प्रेम की नित नेम की। मैं कवी नहीं करुणा हूँ, उन दिनों की दुखियों की। हा संतांचा खरा अधिकार त्यांचे साहित्यातून कळत असतो। प्रातस्मरणीय म्हणजे ब्रह्म मुहूर्तापासून सतत ज्याचे निशंकपणे स्मरण करावे अशा अधिकाराचे। सुखाने जे दबते ते दुःख, मिटते तो आनंद। संत हे स्वानंदी असतात, ते स्वानंदात निवास करतात, तीच साधना समाजाला देतात। देव एकची राहो, जगाचा भेद लयाला जाओ, शांती अखंडित राहो, जगाचा भेद लयाला जाओ। संत तुकाराम महाराज म्हणतात, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगळ। हा खरा वैष्णवाचा धर्म आहे। सर्वांच्या कल्याणासाठी भगवंतापासून निर्माण झालेला धर्म तो भागवत धर्म होय। येथे भेदाभेद अमंगल आहे। हटयोगी स्वामी सीतारामदासजी महाराज वंदनीय महाराजांच्या अवस्था नि अधिकाराचे वर्णन करताना लिहितात, मेरे सखा को मैंने जीवन भर गुस्सा भरते नहीं देखा, दया का वह सागर है और शांति का पुजारी है। उनकी समदृष्टि भगवान राम सरीखी है, विरोधियों को भी क्षमा कर देता है। अवतारी महापुरुषों के जो शारीरिक लक्षण है वह मेरे सखा में पूरे दिखाई देते है, इसी कारण मैं उन्हें भगवान राम कहता हूँ। या अधिकाराचे संतांची पुण्याई आहे म्हणून जग आहे। है संत दुनिया में जगे, तब ही रही दुनिया खड़ी, उनके प्रतापो से अभी तक नहीं नीचे पड़ी। कितना जगत में पाप है अंदाज के बाहर चला, जब संत ही का पुण है वह आज तक जगना ढला। वंदनीय महाराजांना एका सद्ग्रस्ताने संतांनी गुरुबद्दल

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहाँ युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहां अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमन सिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।